0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: वेनेजुएला ने कहा है कि सियासी मुंतकली पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते काराकास में शुरू हो जाएंगे। वेनेजुएला की हुकूमत और अपोजिशन ने ऐलान किया है कि मुश्तरका वर्किंग एजेंडे पर इत्तफाक होने के बाद सियासी इंतकाले इक्तदार से मुतल्लिक बिलमशाफा मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दारुल हुकूमत काराकास में शुरू होंगे। कौमी असम्बली के सदर और हुकूमत के चीफ मुज़ाकरातकार खोर्खे रोड्रिगस ने अपोजिशन रहनुमा देनोर एफिगेरा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद कहा है कि हमने आइंदा हफ्ते काराकास में पहली बिल मुशाफा मुलाकात के इनाकात पर इत्तफाक कर लिया है। 2015 में पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने वाली अपोजिशन इतिहाद की रहनुमा देनोर एफिगेरा ने भी अपने बयान में टेलीफोन गुफ्तगू और इस पर तय पाने वाले मुश्तरका एजेंडे की तस्दीक की है। पेरू में सियाहों को ले जाने वाला तैयारा नाजाका शहर के जवार में गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस मेजर जॉर्जे आंद्रादे ने हफ्ते के रोज मुल्क के जनूबी हिस्से में जाए हादसा पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि हमारी मालूमात के मुताबिक 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान हलाक हो गए हैं। नाजका बलदिया ने फेसबुक पर जारी करदा बयान में कहा है कि यह तैयारा सयाहों को नास्का लाइंस के फसाई नज़ारे के लिए ले जा रहा था। ये वसी जोग्राफियाई नकोश

सामिन, एक बंदरगाह का क्या फ़ायदा होता है? जहाज़ आते हैं जाते हैं, सामान उतारा जाता है, ड्रम कतारों में रखे जाते हैं और खाते बंद कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बंदरगाह महज तिजारत का एक आम पड़ाव होती है, लेकिन कुछ बंदरगाहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मालो असबाब ही नहीं बल्कि इंसानियत का मुश्तरक हाफजा भी मुंतकिल करती हैं। उनकी लहरें सिर्फ जहाज़ों को ही नहीं बल्कि तारीख़ के धारे को भी रास्ता दिखाती हैं। आज हम अपना रुख बाहर रूम की नमकीन हवा की तरफ कर रहे हैं। हम एक ऐसे मगरूर साहिल की तरफ जा रहे हैं जिसने हज़ारों सालों से अजीम सल्तनतों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और जो मशरक़ी बहिरा रूम के अहम तरीन रास्तों में से एक रहा है, गजा की तरफ। आज टेलीविज़न की स्क्रीनों पर अक्सर सिर्फ जंग, मुहासरे और तबाही के हवाले से याद किया जाने वाला ये शहर दर हकीकत इंसानी तारीख के कदीम तरीन, गहरे तरीन और अमीर तरीन तजारती मराकज में से एक है। आइए आज की धुंध को थोड़ा सा छांटते हैं और गजा की 5000 साल कहानी का दरवाज़ा मिलकर खोलते हैं। अब हम अपने जहन में एक नक्शा बनाते हैं। एक तरफ मिस्र की कदीम सरजमीन, दूसरी तरफ अरब और मेसोपोटामिया, शुमाल में शाम, अनातोलिया और बहरा रूम के रास्ते यूरोप। इन्हीं तमाम रास्तों के गठजोड़ पर मुश्तमिल इस तंग साहिली पट्टी पर एक ही शहर उभरता है, गजा। गजा सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं था। यह कदीम दुनिया के अहम तरीन ज़मीनी तिजारती रास्तों में से एक, विया मारिस यानी समंदरी रास्ते का सबसे अहम स्ट्रेटजिक पड़ाव था। मिस्र से शुरू होने वाला यह कदीम रास्ता गजा से होता हुआ शाम, अनातोलिया और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इसीलिए इस शहर की न सिर्फ बंदरगाह बल्कि उसके रास्ते भी कभी खाली नहीं रहे। जोग्राफिया ने गजा को एक ऐसा मकाम दिया था कि जो ताकत उस पर कंट्रोल